क्या आप जानना चाहते हो व्हाट सैवेज एक्चुअली लुक्स लाइक? आई विल टेल यू. माय बेस्टी टेक्स्टेड हर एक्स बॉयफ्रेंड सेइंग, हाय, आर यू फ्री टुनाइट? एंड ही वाज लाइक, हां, क्यों? शी वाज लाइक, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट नोबडी वांट्स यू. ओके, बाय. एंड दैट वाज सो सैवेज, व्हिच काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी टू आस्क यू कि आपने अपनी जिंदगी में अपने एक्स के साथ इवन होने के लिए, रिवेंज पाने के लिए सबसे ज्यादा सैवेज चीज क्या की है? द मोस्ट सैवेज थिंग आई हैव डन It's just be indifferent to them. Nothing hurts like pretending as if that person doesn't exist. On that note, मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कि आपने सबसे सावित चीज़ क्या करी, और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, darling, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

सुंदर सस्ती टिकाऊ डाइस के जिसमें पैसे भी नहीं लगते हैं और बहुत सारा नॉटीनेस भी हो जाता है। मेरी बेस्टी को ना आदत है टू फाइंड लाइक दिस रियली इक्लेक्टिक स्ट्रेंज मैन डेटिंग एप्स पर। उसका सीन मतलब कभी खत्म नहीं होता है। एक बंदा बाहर नहीं जाता, दूसरा ऑलरेडी अंदर होता है। एंड शी वाज टेलिंग मी कि यार तू ना कोई अच्छी सी गेम सजेस्ट कर, वीकेंड पर हम दोनों ये गेम खेलेंगे, मतलब उसका बंदा और वो। और क्योंकि आई एम द मोर क्रिएटिव आउट ऑफ द टू ऑफ अस, मैंने उसे बोला कि व्हाई डोंट यू लाइक प्ले दिस डर्टी डाइस गेम। ये मैंने शायद किसी मैगजीन में कहीं पढ़ा था कि जो डाइस होती है ना, जिसे हम मतलब सांप सीढ़ी खेलते हैं और लूडो खेलते हैं, उसमें क्या होता है, छः आपके कॉर्नर्स होते हैं और छः के छः साइड्स में नंबर्स होते हैं ना, 1, 2, 3, आप डाइस रोल करते हो और जो भी नंबर आता है। तो आई सेड कि तू छः ऐसी नॉटी चीज़ें लिख ले और डाइस में ना हर नंबर के साथ एक नॉटी चीज़ जोड़ दे। जैसे कि अगर मान लो आपने 2 रोल किया और 2 के साथ लिंक्ड है कि यार हमें बालकनी में जाकर किस करना चाहिए, देन यू विल हैव टू डू दैट। तो आई सेड ऐसे ना तू लाइक 6 × 2 12 चीज़ें सोच ले और ऐसे ये सारा दिन तुम डाइस रोल कर सकते हो और जो भी नंबर आएगा उसके अगेंस्ट तुमने जो भी लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग विद दैट, यू जस्ट हैव टू डू दैट नॉटी थिंग। भाई उस बंदी ने इतना गंद मचाया ना इस वीकेंड में, इतना गंद कि आई थिंक उसके नेबर्स एक पिटिशन साइन कराने वाले हैं कि इस लड़की को बंद कमरों के अंदर ही रखना है। लेकिन द थिंग आई एम टेलिंग यू इज दैट अगर आपके पास भी You don't have these really expensive, you know, naughty board games जो abroad मिलती हैं imported, तो आप घर पे भी अपना ये एक simple सा dice लेके उसे dirty dice game में convert कर सकते हो and imagine the kind of fun you can have, क्योंकि the only limitation is your imagination. अब सोचो इसके बारे में और अगर आपको tips and tricks चाहिए, why don't you hit me up Insta पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, so do whatever you have to do baby, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot।

0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेन सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूं विद गाना नंबर 20, व्हिच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
0: नंबर 20।

इसके बाद एक बिल्कुल नई एंट्री, टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: स्लिपिंग डाउन बाय वन पोजिशन, अरिजीत सिंह का गाया तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन अपनी मेमोरीज की हार्ड ड्राइव से एक ऐसा चैप्टर ढूंढ के निकाल रहा हूँ दैट इज गोना टेक यू बैक टू योर फ्रेंड्स एंड टाइम। इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा खोआ जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंडट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 it's hot Suren ke saath only on Mirchi it's hot number 11

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका तर्ज, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
1: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी एक ऐसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता है वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते, वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
0: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक। स्पेशल

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है, एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है। इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते। नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है। तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का, मोहित ने खुद उसका राज बताया।
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बजेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं। जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है। तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है। मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे, मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूँ। तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं।
0: यार बस यही फर्क है, और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं, क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया। फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के। इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन।
2: नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 3।

My God, Chinnari Chinnari after so many weeks has finally climbed to number 2, even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BV number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen. Uske bawajood, gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था। कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक म्यूजिक सुनते रहिए, खुश रहिए, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना बताना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। शो में हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधे शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स एंड कॉम्पोज। The song features Elvis Yadav, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 10। स्टे कनेक्टेड फॉर द काउंटडाउन। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर
2: 10। हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: गाने का नाम साडी सुन, सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार और गाना नंबर 10। ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10 only show on Mirchi, which is all about the hottest pop songs of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Abhi ke abhi jao Instagram pe. फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कई बार ऐसा होता ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाएं, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस, वो कहीं से भी आप सुने एकदम पूरा गाना याद आ जाता है। सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है। हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलोडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं। एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह। चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करें ना करें, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी। माय फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोस कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे। नाउ @RJKanika इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी @RJKanika पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौर। गाने का नाम है बैंगल्स, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3
1: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7 7 7

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे, अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanega. Connect with me. Instagram par jao. Mera handle is @RJKanega. You know, har party mein ek time aata hai jab sirf Punjabi gaane chal rahe hote hain. Kahin na kahin pichle 10-15 saal mein hamara association with Punjabi music hi sirf ye tha. And jab main kehti hu na hamara, I mean wo log jinhe Punjabi bolni ya samajhni nahi aati. Aur jitni bhi aati hai wo sirf gaanon se aati hai, apne favorite artist aur singers se aati hai. Lekin pichle 4-5 saal mein I have seen a massive transition. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माय मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती, बिकॉज आर्टिस्ट लाइक AP टिल्लों, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा बटिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड, काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है. पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुंवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी, मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचें. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी, लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Crazy For You by Coer this week on our Gana Spotlight at RJ Kanika on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट आरजे कनिका पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीश सरकारन हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5.

टॉप टेन गाना इंडी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर थ्री

0: इसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
1: पर, this is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है RJ Kanika। Instagram पर जाओ, connect करो, मेरा handle is @RJ Kanika। कोई बातें बतानी है, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके hit me up। Trust me, it really matters a lot। कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेंबर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माय डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, पर इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी और मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड। अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है, इज द बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
3: मैं बिल्कुल इस फीलिंग को समझता हूँ। जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बॉर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग एंड यू शुड हैव, यू आर बॉर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बॉर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोले मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और ए आर रहमान, तब ए आर रहमान भी नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song, अभी भी मुझे goosebumps आते हैं इस गाने को सुन के. I think this will go down as one of those classics जो मैं आज से 10 साल बाद भी play करूंगी और हमें ऐसा ही feel होगा. Arman Malik की आवाज, Arman Malik की composition, that was मैं रहूं या ना रहूं. At RJ Cunning on Instagram पर आओ and tell me about your story. कभी कोई ऐसा compliment मिला हो जो आज भी बहुत special feel कराता है, मुझे आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का गाना, इट्स अ कुक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, जल्दी जल्दी फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना तो बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई माइट फीचर योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द शो। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। और ये हमारे शो का सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है। इतने सारे DMs, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ। इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के। ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक। बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दो सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस अब हम कहानियों में सुनते हैं, जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बन था। वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाह कर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए। आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया। एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम। दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनेका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10, एंजॉय।

0: What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaane ka naam Deewana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s 2000s ke yehi wale gaane, you know, it makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown. It's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग इज एवरीवेयर एंड वी आर हियर फॉर इट. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. एंजॉय.
1: नंबर 1.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तो मेरे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड ऑन दिस डे चलो देखते हैं क्या हुआ था हिस्ट्री में। आज है 14th of August 1040 में स्कॉटलैंड में किंग डंकन द फर्स्ट ने एक बैटल में अपनी जान गंवा दी थी एंड मैकबेथ बिकेम किंग। हाँ, शेक्सपियर वाला मैकबेथ। 1457 में द मेन सॉल्टर वॉज पब्लिश्ड, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर प्रिंटेड बुक्स विद अ कंप्लीट डेट। बेसिकली 1457 में पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने अपना प्रूफ दिया था कि हम एग्जिस्ट करते हैं। 1880 में जर्मनी का मैसिव कोलोन कैथेड्रल फाइनली कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड सेंचुरीज अर्लियर। 1935 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साइन द सोसाइटी सिक्योरिटी एक्ट इनटू लॉ। अमेरिका का सोशल सेफ्टी नेट गॉट अ मेजर फाउंडेशन। 1945 में हैरी ट्रूमन अनाउंस्ड जापान सरेंडर, इफेक्टिवली एंडिंग वर्ल्ड वॉर टू। एंड देन 1947 ऑगस्ट 14th पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट एज ब्रिटिश इंडिया वॉज पार्टिशन्ड, लीडिंग टू वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ड्रामेटिक मास माइग्रेशंस इन हिस्ट्री। फॉर आवर साउथ एशियन कम्युनिटी दिस डेट कैरीज बोथ नेशनल प्राइड and a complicated, painful history. And to all our Pakistani listeners, wishing you a peaceful and meaningful Independence Day. And finally, 2003 mein, a massive blackout hit the northeastern US and Ontario. Lights out hui thi across the region. And for more Mirchi Mornings, connect karo mujhse Insta or X pe, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बचा।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड बिफोर यू डिसाइड आज अम्ब्रेला लेकर जाना है कि नहीं, लेट्स चेक आउट आज का वेदर का क्या हाल चाल है. राइट नाउ इट्स अराउंड 69 डिग्रीज फारेनहाइट. स्काइज जो है मोस्टली क्लियर है. सो मॉर्निंग कम्यूट का सीन जो है काफी चिल लग रहा है. बट डोंट गेट टू कम्फर्टेबल, क्योंकि 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशंस होने वाले हैं. उसके बाद अराउंड 2 बजे क्लाउड्स थोड़ा सा ब्रेक होने वाले हैं एंड वी आर लुकिंग एट अ पार्टली क्लाउडी सिचुएशन. टेम्परेचर वाइज टुडे यू आर लुकिंग एट द लो ऑफ 69 डिग्रीज फारेनहाइट एंड अ हाई ऑफ 87 डिग्रीज फारेनहाइट. With the humidity and all that jazz, it could feel like 89 degrees Fahrenheit. So, आज थोड़े से हल्के पुलके कपड़े पहनकर बाहर जाना. रेन का क्या हाल चाल है? 0 millimeters in the last 24 hours and also 0 expected in the next 24 hours. So, आज के दिन तुम्हारा अम्ब्रेला officially Independence Day की छुट्टी पर जा सकता है. And compared to yesterday, pretty much the same high रहेगा, 87 degrees Fahrenheit, कल ही की तरह. And since it's August 14th, the eve of Independence Day in India and Pakistan ka Independence Day, whether you are celebrating, working, commuting or just looking for that perfect weekend vibe ya phir kuch achha sa status dalna chahte ho WhatsApp par ya Instagram par, मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ. मेरा नाम है प्रिसला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले द यूएस इज अर्जिंग पाकिस्तान टू इम्प्रूव फिस्कल ट्रांसपेरेंसी, बेसिकली ग्रेटर पब्लिक एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑफ मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस स्पेंडिंग। A US State Department report says Pakistan has made progress in making budget information public, but says gaps remain. Number two per India is set to have its first privately branded passenger train, with a Tejas Express being presented as the Sprite Tejas Express. मतलब कि रेलवे एडवर्टाइजिंग का अपग्रेड हो चुका है, अब आज सिर्फ ट्रेन के साइड में नहीं बल्कि ट्रेन ही ब्रांड बन गई है खुद से। And lastly, Cristiano Ronaldo and Jorgina ka marriage contract. What is it all about? The couple married under the separation of property regime in Portugal. Simple language mein, shaadi hai, pyaar bhi hai, but assets jo hain, wo automatically joint family nahi ban jane wale hain. Under this arrangement, what each person owns or acquires generally remains individually owned. And that's it for Mirchi Hour ka 3. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।

0: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
1: कुड़िए ने मेरे दिल विच वस जा कुड़िए ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा

0: की है।
1: ओ, गल करनी थी।
0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की।
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात होर सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गए, बस कर अब।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। और अब ये सुनो, हैदराबाद में एक अलेजेड थीफ रिपोर्टेडली घर में घुस गया, उसने गोल्ड ज्वेलरी भी चुरा ली और भागने की बजाय घर के अंदर जाकर सो गया। होम ओनर्स जब वापस आया ना तो उन्हें कबर्ड पूरा रैनसैक्ड मिला है और ये जनाब ना फ्लोर पर घोड़े बेचकर सो रहे थे। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के हिसाब से बंदा जो था वो किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में था इसलिए उसे नींद आ गई। तो बेटा निकला तो वो काम करने था घर से, मतलब डबल कोट्स में चोरी इज हिज काम, और वहां पर जाकर वर्क पर ही सो गया। वैसे जोक्स अबाउट ब्रेकिंग इनटू समवन्स होम एंड स्टीलिंग इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम, लेकिन बहुत आसान तरीका बताती हूँ मैं तुम्हें अच्छी ज्वेलरी पाने का, वो है तनिष्क। तनिष्क पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहाँ पर तुम जा सकते हो, 25% ऑफ मिल रहा है तुम्हें डायमंड वैल्यू पर एंड मेकिंग चार्जेस पर। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी ज्वेलरी रखी है जो 18 कैरेट से अबव है वो लेकर भी वहां जाओगे ना तो 0% रिडक्शन तुम्हें वहां पर मिल रहा है। यानी कि ऑफर्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग डील्स चल रही है, सब कुछ चल रहा है तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स पर। वहां जाना तो बनता है, और अभी फिलहाल गाना बनता है, यानी कि मिर्ची दर गाना आने वाला है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। चिपक के बैठो यहीं पर, कहीं जाना नहीं, मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी चाटी चाटी कर सकते हो तुम। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिस्तिला, तुम्हारे साथ में दिस इज वर्चुअली मॉर्निंग. जरा बारी आ चुकी है तालियां बजाने की, केक काटने की, कैंडल्स फूंकने की. एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट. अब हम बर्थडे की बात करने वाले. अगर तुम्हारा आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो किसके साथ तुम सेलिब्रेट करो. लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. व्हाट अ डे टू बी बॉर्न, राइट? हैप्पी बर्थडे, ढेर सारी खुशियां तुम्हारी लाइफ में. मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. हॉलीवुड से वीव गॉट हैली बेरी, मीला कुनिस, लेजेंडरी कॉमेडियन स्टीव मार्टिन, एनबीए आइकॉन मैजिक जॉनसन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर डैनियल स्टील, सोप्रानो सुपरस्टार सारा ब्राइटमैन एंड साथ में अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस मार्सिया गे हार्डन. और हमारे देसी लोग भी कम नहीं, आज उनके भी हैप्पी वाले बर्थडे. सबसे पहले वीव गॉट द वेरी मेलोडियस सुनिधि चौहान, साथ साथ में कॉमेडी लेजेंड जॉनी लीवर का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है. एंड वीव गॉट मोहित रैना, हु इज अ टेलीविजन एंड फिल्म फेवरेट एंड कैरेक्टर आर्टिस्ट मोहनीश बहल एंड टेलीविजन होस्ट एक्टर गौतम रोड़े. और अगर आज तुम भी अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो तुम्हारा बर्थडे स्क्वाड जो है काफी बड़ा ब्लॉकबस्टर है आई मस्ट से. ऑल्सो वैसे रिमाइंड करने की जरूरत तो है नहीं, बट आज है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे और कल है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे. ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी बधाइयां. एंड अभी बजाने वाली हूँ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिस्सिला, स्टे विद मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. इंस्टाग्राम और एक्स पर एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर अभी लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,355 $4,350 पर ट्रे है उसके साथ। गोल्ड के प्राइस ऑलमोस्ट $300 अपर ट्रेंड है एक हफ्ते में, कल से अबाउट $100 हायर। दोस्तों इंतजार ना करें, गोल्ड एग्रेसिवली अपर ट्रेंड की तरफ है। राज ज्वेल्स के साथ पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार 1 ounce 100 grams किलो बार्स अवेलेबल टू इन्वेस्ट। आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
0: And there you have it, latest gold rate update सुना तुमने exclusively on Mirchi Mornings with me Priscilla. Connect करो मुझसे Insta और X पर, मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp का number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

इधर मेरा नाम है प्रिस्सला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब हम सुनने वाले हैं अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले बांग्लादेश में सेवरल एरियाज आर फेसिंग सीवियर पावर आउटेजेस एंड लोड शेडिंग। फ्रस्ट्रेशन के बाद कुछ प्लेसेस पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज को डैमेज करने की रिपोर्ट्स भी आई हैं। एंड स्टेट ओन्ड यूटिलिटी PBDB हैज आस्क्ड फॉर पुलिस सिक्योरिटी एट ग्रिड्स एंड सबस्टेशंस। गवर्नमेंट ने मॉल्स को 8 PM तक क्लोज करने और बिलबोर्ड्स को 7 PM तक स्विच ऑफ करने के ऑर्डर दे दिए हैं। नंबर टू पर अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, पुर्तो रिकन बॉक्सर प्रिचर्ड कोलन हैज डाइड एट जस्ट 33, नियरली 11 ईयर्स आफ्टर सफरिंग अ सीवियर ब्रेन इंजरी ड्यूरिंग अ 2015 फाइट। ही अंडरवेंट इमरजेंसी सर्जरी एंड स्पेंट 221 डेज इन अ कोमा। His father announced his death on Thursday. It's a reminder that behind every sport, there are real people and real families, sending strength to everyone who loved him. And lastly, the Yash and Kiara Advani starrer Toxic has received an A certificate, meaning adults only, and the runtime is a solid 3 hours and 14 minutes. Plot reportedly follows a gangster seeking personal redemption in post-independence Goa, with violence and jealousy at the center of the story. Basically, Toxic naam is movie ka bilkul apt hai. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू राशि जोन पार्ट वन, जहाँ पर हम पहली छह राशियों की बात करने वाले हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस आ सकती हैं तुम्हारी लाइफ में। फीलिंग्स को सपास मत करो, पॉज लो, प्रोसेस करो, देन बोलो। हर इमोशन को म्यूट करना सोल्यूशन नहीं होता है। लकी कलर आज तुम्हारा है कोरल रेड, लकी नंबर इज 8। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज कोई फ्रेंड तुमको कोई इंस्पायरिंग पर्सन से इंट्रोड्यूस कर सकता है। न्यू कनेक्शन को चांस दो, बट अगर बॉडी कह रही है बॉस रेस्ट करना जरूरी है तो रेस्ट भी करो। लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, वर्क बिजी रहेगा बट हेल्थ लुक स्टेडी। आज अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करने का टाइम है, उसे भूलना नहीं। एक जेन्युइन थैंक यू कभी कभी किसी का मूड बहुत अपग्रेड कर देता है। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, पॉजिटिव एटीट्यूड आज तुम्हारा सुपर पावर है। इमोशंस हैवी लगे तो क्लोज फ्रेंड्स पर लीन ऑन करो। स्ट्रांग बनना मतलब सब कुछ अकेले कैरी करना नहीं होता है। स्ट्रांग बनना इज कुछ भी आएगा आई विल फेस इट। लकी कलर पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, मून तुम्हारे साइन में है सो कॉन्फिडेंस इज ऑन, बट दूसरों की हेल्प करते करते अपनी बैटरी 0% तक मत लेकर आओ यार, थोड़ा सा रिचार्ज करो। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 6। वर्गो यानी कन्या राशि, फैमिली मैटर्स में एक्स्ट्रा पेशेंस रखो आज के दिन। बिग डिसीजंस को रश मत करो और अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी दो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन 2 AM पर गूगल करना जरूरी नहीं है। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 21। एंड दैट वाज द एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ राशि जोन। बाकी बची छह राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और मेरे साथ में है बाकी बची हुई छह राशियाँ।
1: मिर्ची राशि जोन
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि। सोशल आउटिंग्स और रिलैक्सिंग टिप्स आज मूड को लिफ्ट करने वाले हैं। फाइनेंसेस भी पॉजिटिव और स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। बस वेकेशन प्लान करते वक्त बैंक बैलेंस को ब्लॉक मत कर देना। लकी कलर फॉर यू इज पीच। लकी नंबर इज 17। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वर्क प्लेस प्रेशर थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। स्टेडी स्टेप्स लो, सेल्फ कंट्रोल रखो, और हर ईमेल को पर्सनल अटैक समझने की जरूरत नहीं है। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी। लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, छोटे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स रेस्टलेस एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। काम रहो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, और हर डिटूर का मतलब डेस्टिनेशन कैंसिल नहीं होता है। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज। लकी नंबर इज 25। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज न्यूट्रल चार्म फुल पावर में है। सिबलिंग या क्लोज फ्रेंड प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए तुम्हारे पास आ सकता है। बेसिकली फैमिली का अनऑफिशियल गूगल मैप आज तुम हो। लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड। लकी नंबर इज 4। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ट्रैवल या कम्युनिकेशन में पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। प्लान्स चेंज हो तो फ्लेक्सिबल रहो एंड राइड इट आउट। फ्लाइट डिले को पर्सनालिटी ट्रेट मत बना लेना। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी नंबर इज 13। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मीन राशि, पास्ट हेल्थ कंसर्न्स में इम्प्रूवमेंट के साइंस हैं। वन स्टेप एट अ टाइम लो, कोऑपरेटिव स्पिरिट रखो एंड अपनी रूटीन को जेंटली फॉलो करो। लकी कलर फॉर यू इज सी ग्रीन। लकी नंबर इज 19। एंड दैट वाज योर स्टार्स का अपडेट आज के लिए। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

एंड दैट्स इट माय दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अब खत्म होने वाला है ये शो, एंड बिफोर आई रैप अप तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताकर जाती हूँ। एक रीसेंट प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे लुक्ड एट हाउ पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान व्यू ईच अदर। द पोल फाउंड दैट 78% ऑफ इंडियंस सर्वेड एक्सप्रेस्ड एन अनफेवरेबल व्यू ऑफ पाकिस्तान एंड 91% ऑफ पाकिस्तानी सर्वेड एक्सप्रेस्ड एन अनफेवरेबल व्यू ऑफ इंडिया। अब नंबर सुनकर रिएक्शन आना काफी नेचुरल है, लेकिन ये याद रखो, दीज आर सर्वे रिस्पॉन्सेज, नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एवरी इंडियन एंड एवरी पाकिस्तानी। लेकिन ऑनेस्टली यार, हम साउथ एशियंस जो है वो हर एक चीज में एक्सपर्ट्स तो होते ही है। फूड के नाम पर इंस्टेंटली अग्री करना, बिरयानी पर डिबेट हो सकती है, चाय पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, म्यूजिक, मूवीज, लैंग्वेज, फैमिली, ह्यूमर, सब कुछ पे अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, और कई जगह पर फेमिलियरिटीज भी हो सकती है अक्रॉस रीजन। सो मेबी द पॉजिटिव टेक अवे इन दिस इज दैट वी डोंट हैव टू अग्री ऑन एवरीथिंग टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमैनिटी एंड शेयर्ड कल्चर ऑन द अदर साइड। थोड़ा सा लेस अस वर्सेस देम एंड थोड़ा सा मोर हे वी आर नेबर्स। एंड स्पीकिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग वेयर वी कम फ्रॉम, आजादी का सेलिब्रेशन इज हियर। Eden Robe is bringing the feeling of home to USA. From August 6th to 16th of August, yani ki do din aur bache hain, enjoy karo flat 35% off on apparel for men, women and kids. Saath mein 10% off extra bhi hai on fragrances. You can just go and visit their flagship store in North Brunswick, New Jersey. Ya phir online shopping bhi kar sakte ho nationwide. It's at us.edenrobe.com. That is EDENROBE. That's my cue to say bye-bye. Follow me, Pris is my handle name, MIRCHIPRIS. Hope you have a wonderful weekend. Happy Independence Day to Pakistan and happy Advanced Independence Day to India. Abhi ke liye tada bye bye. Stay tuned and stay hot. Bye.

0: हर एक चीज का आखिरी बार तो होता ही होता है, और ऐसे ही वो एक दिन भी आया था हमारी जिंदगी में जब हमने कुछ आखिरी बार किया। और आज ना ऑल ऑफ अ सडन आई कैन थिंक ऑफ दैट डे जब मैंने अब तक आखिरी बार खो खो खेला था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. हाँ यार, all of a sudden मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने last time खो खो खेला था अब तक, और वो इसलिए याद है क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए थे जब हमने खो खो खेला था। बचपन का टाइम होता तो शायद इतना मुश्किल हो जाता मेरे लिए याद करना कि मैं ना याद कर पाती। एंड ये ना 2015 की बात है, तो 10 साल पहले यानी कि 2015 में दिवाली की छुट्टियों में हम सारे कजन्स ने प्लान बनाया था कि हम इकट्ठे होंगे, और एक दूसरे को मनाने के बाद जब हम इकट्ठे हुए तो पता नहीं क्यों और कहां से ऑल ऑफ अ सडन खो खो खेलने का प्लान हो गया। एंड माइंड यू, हम सब बड़े हो गए थे तब भी, हाँ मतलब कोई कॉलेज में है, किसी की जॉब नई नई शुरू हुई, ऐसा सारा सबका कुछ ना कुछ यू नो अडल्टिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जो बचपना था ना हमारे अंदर वो नहीं गया था, और हमने खो खो खेला। और मुझे आज भी वो शाम याद है यार, इतने मजे किए थे हमने, इतने मजे किए थे कि बस वो जो शाम है ना वो छपी हुई है मेरे दिल और दिमाग पे। लेकिन वो शायद आखिरी बार इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने ना जिंदगी में कदम रखा ही था, सबने कमाई करनी शुरू करी ही थी, अडल्टिंग सबकी शुरू हुई थी, उसके बाद ना सबने लाइफ को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जॉब्स को लेकर इतने नर्वस कि यार अगर छुट्टियां ज्यादा ले ली तो बॉस डांटेगा, काम को लेकर इतने ज्यादा एंक्शियस कि सिर्फ काम में ही घुसे हुए, अब तो फोन पे बात करने का भी टाइम नहीं है। और ना मैं इनको बुरा नहीं कहूंगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार होता है शायद ऐसा लाइफ में कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने बिजी हो जाते हैं और आपको लगता है कि जॉब्स ही इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जहां पर आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे मिलना रेगुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो टाइम भी आएगा, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है ना तो आपके लिए भी आएगा और मेरी जिंदगी में तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैं सबको याद दिला रही हूँगी ना ये बात। एग्जैक्टली माय पॉइंट। चलो जी, अभी तो फिलहाल मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। और सुनो, एक काम और करो, अगर आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम कोई बचपन का खेल या कोई बचपन का काम किया हो तो DM me डेफिनेटली on my Instagram handle which is मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड।

0: इडियट्स में प्रोफेसर वायरस ने कहा था कि लोगों को ना सिर्फ नंबर वन याद रह जाता है, बाकी और कुछ याद नहीं रहता, और बात बिल्कुल सही है। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि नंबर वन नहीं यार, जो लास्ट किया था ना, जो लास्ट हुआ था उसे मेमोरी में ताजा किया जाए।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And you know, मुझे आज जो कुछ moments ऐसे हैं जो last कभी हुए थे, जैसे कि school का वो आखिरी दिन, यानी कि farewell वाला दिन, boards का time था, of course, सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, prep leave चल रही थी, school तो हम जाते नहीं थे, और उसी दौरान farewell का time भी आ जाया करता था, और किसी ने ना इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि हमारे teachers, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, हमारे जितने भी स्कूल के लोग हैं, सारे के सारे एक छत के नीचे इकट्ठा, ये आखिरी बार हो रहे हैं, इसके बाद नहीं होंगे, किसी ने नहीं सोचा। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड था वो दिन, क्योंकि हमारा ध्यान पता है किन सारी चीजों पर था, कि कौन कैसा लग रहा है, और मेहनत भी बहुत की थी यार, ऑफ कोर्स। आई मीन स्पेशली मैंने साड़ी खरीदी थी, जबकि मम्मा के पास पूरा साड़ियों का कलेक्शन है ऑलरेडी, लेकिन फिर मम्मा ने अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से मुझे एक सिल्वर का लॉकेट भी दिलाया था, और स्टूडियो में ले जाकर फोटो खिंचवाई थी। वैसे पार्लर में जाकर तैयार होने का सीन तब तो इतना था नहीं भाई, तो हमारी जो पड़ोस वाली दीदी थी ना, वही आई थी मुझे तैयार करने के लिए। यस, और क्या दिन था वो वाकई में, खाना पीना, साड़ी संभालते रहना, एंड देन वो वाला सीन भी आ जाता था, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट स्माइल, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे हमें टाइटल्स दिए गए थे, और मुझे ऐसा याद नहीं है कि मुझे कोई टाइटल मिला था, लेकिन बात वही है कि हम इन सारी चीजों में इतना इन्वॉल्व थे कि कहीं वो दिमाग में थॉट ही नहीं आया कि ये आखिरी टाइम है जब हम इस तरीके से मिल रहे हैं, और उसके बाद आई स्वेयर हम कभी ऐसे नहीं मिले। एंड दिस डे बिकेम वन ऑफ दोज लास्ट डेज जो मुझे याद रह गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपके स्कूल का लास्ट डे याद है, तो मुझे डीएम करके बताइएगा, और माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ट्वेल्थ बोर्ड का वो लास्ट वाला पेपर वाला दिन जब हम इतने खुश हो रहे थे कि ये एग्जाम्स खत्म, स्कूल खत्म, हम ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे उस मोमेंट में कि सब कुछ तो खत्म, साथ ही साथ ये रोज मिलना, एक दूसरे को देखना, गॉसिप करना, गप्पे मारना, दिल के छाले फोड़ लेना और दिल हल्का कर लेना, ये भी खत्म।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. और वो दिन एक ऐसा दिन है जो आज भी मेरी memories में छपा हुआ है. Because of the reason कि यार वो आखिरी दिन था जब हमारी पूरी क्लास कॉमर्स सेक्शन जो था वो इकट्ठा था. उसके बाद हम कभी एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिले नहीं. कहीं चार दोस्त मिल जाते हैं, कहीं दो दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी क्लास का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हुआ. रियूनियन में भी सब साथ नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ द रीजन कि सब अलग अलग शहरों में बस गए हैं, किसी की शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो सब नहीं आ पाते हैं. लेकिन वो दिन मुझे याद है जब हम खुशी मना रहे थे कि आखिरी पेपर है, आखिरी दिन है स्कूल का, ये मुझे याद है. आज भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए, भीड़ लगाए हुए, सबके सब हो हल्ला करते हुए दिखाई दे रहे मुझे अपनी मेमोरी में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो. और हमें से काफी सारे लोग जो है अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर गए थे. पहले से डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने कि हम अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर आएंगे उस दिन. और मार्कर से सबने उन व्हाइट शर्ट्स के ऊपर मैसेजेस लिखे और लिखवाए एक दूसरे से. एंड दैट्स सच अ क्यूट मोमेंट, आई स्टिल रिमेम्बर. मेरे पास आज भी वो व्हाइट शर्ट रखी हुई है जिस पर मेरे क्लासमेट्स के, मेरे दोस्तों के, सबके मैसेजेस हैं. इनफैक्ट उस व्हाइट शर्ट की उस दिन भी इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब दिस इज लाइक अ ट्रेंड, ये तो करवाते ही करवाते हैं. लेकिन आज उस सिर्फ एक व्हाइट शर्ट जिसकी अहमियत बढ़ गई उन मैसेजेस की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. वो ढूंढती हूँ कभी कभी तो मैं कि कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गई है और उसको संभाल के रखा हुआ है कि यार ये गायब नहीं होनी चाहिए. भले ही कोई नई शर्ट इधर उधर हो जाए, लेकिन ये पुरानी वाली जिसके ऊपर मार्कर्स से आड़ी तिरछी लाइनों में मेरे दोस्तों ने, मेरे क्लासमेट्स ने मैसेजेस दिए हुए हैं, ये कहीं नहीं जानी चाहिए. वो ज्यादा प्रेशियस हो गई है मेरे लिए. तो सोचो जरा, हम जिस मोमेंट में थे उस मोमेंट में हम कुछ और फील कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि ये मोमेंट अब कभी नहीं आएगा. एंड आई थिंक लाइफ का हर एक मोमेंट कुछ इसी तरीके से है. आज भी कुछ ऐसा ही है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बचपन की यादों में जाते हुए कि आपको क्या ऐसा कोई मोमेंट याद है कि यार वो लास्ट था, उसके बाद तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं. डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देवियों और सज्जनों, इस डायलॉग से पता लग जाता है कि आप क्या देख रहे हैं।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, कौन बनेगा करोड़पति इज अ शो जो बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन जब इस शो की शुरुआत हुई तो ये शो ने अमिताभ बच्चन के करियर को पुनर्जन्म दिया था। दिस वॉज द टाइम व्हेन अमिताभ बच्चन वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच और इस शो ने उन्हें फिर एक नई पहचान दी एंड ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम अगेन, लेकिन एक नए अवतार में। हालांकि इस शो को शाहरुख खान ने भी होस्ट किया है, लेकिन लुक्स लाइक द ऑडियंस डज नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन एल्स अपार्ट फ्रॉम अमिताभ बच्चन होस्टिंग द शो। तो देवियों और सज्जनों, 10 बज गए क्या? स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: देखो यार, अभी लाइट रिमोट से या मोबाइल के ब्लूटूथ से बंद हो सकती है, लेकिन एज अ 90s किड लाइट बंद होती थी इस डायलॉग से, जो लास्ट में आएगा वही लाइट बंद करेगा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड एज अ 90s किड यही हमारा तरीका होता था यार, किसी भी कमरे की लाइट बंद करने का, कि खुद तो भाग लो और ये ऐलान करते हुए भागो कि जो कमरे में से सबसे लास्ट में निकलेगा ना, वही लाइट पंखे टीवी बंद करके निकलेगा। लेकिन आज तो लाइफ 360 डिग्री टर्न ले चुकी है। आज लाइट बंद करने के लिए कोई ऐलान नहीं करना पड़ता है, या तो रिमोट यूज कर लो या अलेक्सा को बोल दो, लाइफ सॉर्टेड है। किसने सोचा था कि टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ जाएगी कि लाइट बंद करने के लिए बंदों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी बात पे अल्लाह के बंदे हंस दे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear exam wale revision.
2: यादों को चिट्ठी।
1: बाप रे बाप, टाइम टेबल आता नहीं था कि तुम्हारी एक लिस्ट बन जाया करती थी कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एग्जाम्स पास आते हुए नजर आते थे और तुम हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते थे। सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे साथ बैठना, वही पुराने चैप्टर्स को दोहराना, टॉपिक पर टॉपिक टिक करना, जैसे हर बार कुछ नया सीख रहे हो जबकि सब कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ होता था। तुम्हारे बिना तो जैसे एग्जाम्स की तैयारी ना बिल्कुल अधूरी लगती थी। अगर किसी सब्जेक्ट में मैं तुम्हें नहीं लाती थी ना अपने साथ, यानी कि मैंने अगर उस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया है, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं एग्जाम कैसे दे रही हूँ। कभी रट्टा मारते वक्त तो मेरा साथ देते थे, तो कभी दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में तुम्हारे सहारे सब कुछ आसान हो जाता था। तुम्हारी वजह से रिवाइज वंस बिफोर स्लीपिंग जैसी सलाहों पर अमल हो पाता था। और वो लाल और नीले रंग के हाइलाइटर्स, वो भी तो कितने इम्पोर्टेंट वाले टैग्स थे। सब आज भी मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। नहीं नहीं, कोर्स मटेरियल नहीं, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल। उस टाइम पर शायद हम ज्यादा ही शिकायतें करते थे, थक जाते थे, लेकिन आज जब वो दौड़ भाग भरे दिन नहीं है ना, तो तुम और तुम्हारा वो साथ बड़ा याद आता है। अब जिंदगी की किताबें बदल गई हैं, लेकिन सच कहूं तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ना सिर्फ हमारी नॉलेज को दोहराया करते थे बल्कि पेशेंस और मेहनत भी सिखाया करते थे। और शायद तुम्हारे साथ बिताए हुए पल की वजह से ना आज हम लाइफ को भी रिवाइज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली तुम जो हमारे स्कूल टाइम में थे वो आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद हो। वो अलग बात है कि उस कोर्स मटेरियल के साथ, सीरियस वाले लुक के साथ नहीं हो, लेकिन हो तो सही। तुम्हें याद करती, तुम्हें गुनगुनाती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई डिड नॉट रियलाइज यार, शाहरुख खान की चलते चलते विद रानी मुखर्जी वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स व्हिच वाज रेयर, जहां पे हीरो हीरोइन की इतनी जल्दी शादी हो जाती है, एज इन मतलब मूवी चलते चलते शादी हो जाती है, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो सिर्फ लव स्टोरीज ही दिखाई गई है ना, यहाँ पर मैरिज स्टोरी भी दिखाई गई है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And I think ये शायद एक वजह थी कि मुझे चलते चलते उस दौर में इतनी नहीं समझ में आई थी, क्योंकि शादियां किसको समझ में आती थी, रोमांटिक तो हम सब थे, लेकिन शादी मूवी में भी हो जाती थी ना, तो हमारा भी रोमांस खत्म हो जाया करता था। बट यू नो, इस फिल्म की बिहाइंड द सीन्स में भी काफी सारी चीजें जो हुई और हमको नहीं पता है, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ। यू नो, इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस पता है किसको चुना गया था? ऐश्वर्या राय बच्चन को। आई मीन तब वो बच्चन नहीं थी, ऐश्वर्या राय ही थी, लेकिन उनको चुना गया था। मगर उस वक्त उस दौर में सलमान खान और ऐश्वर्या राय वर कपल, और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस थे कि सलमान खान सेट्स पर आया करते थे और कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जिसकी वजह से शाहरुख और सारी टीम को ये लगा था कि यार दिस इज ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर ट्रबल्स फॉर अस। एंड इवेंचुअली ऐश्वर्या हैड टू लीव द फिल्म, व्हिच ऑल्सो कॉज्ड फ्रिक्शन बिटवीन ऐश्वर्या एंड शाहरुख खान। और मुझे आज भी याद है कि एक्चुअली तब बॉलीवुड के गॉसिप कॉलम्स में ये खबरें ना खूब आ रही थी कि सलमान खान एक मूवी के सेट पर गए और वहां पर ऐश्वर्या से उन्होंने लड़ाई करी, एंड शाहरुख खान वाज आल्सो देयर, एंड शाहरुख खान बीच में, एंड व्हाट नॉट, ये सारी की सारी गॉसिप्स थी उस टाइम पर। आज जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो यस, कनेक्टिंग द डॉट्स, इट वॉज समवेयर ट्रू। एंड लेटर ऑन शाहरुख खान ने इस बात के लिए अपना रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया कि ये जो चेंज उनको करना पड़ा था ना, कि ऐश्वर्या को ना लेकर एक दूसरी एक्ट्रेस के लिए तलाश शुरू करें इस फिल्म के लिए, वहां पर उनको बुरा तो लगा ही था। बट ऑल सेड एंड डन, इवेंचुअली द फिल्म वाज डन बाय रानी मुखर्जी। लेकिन जब रानी मुखर्जी स्टेप्ड इनटू द रोल, तब फिर से रानी और ऐश्वर्या के बीच में क्लैश आ गया, बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब चलते चलते ऐश्वर्या को छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस जो उनकी और सलमान खान की रिलेशनशिप में आ रहे थे उस वक्त, तो फिर ये फिल्म कई सारी एक्ट्रेसेस को दी गई थी, लेकिन सम चोज नॉट टू डू द फिल्म जस्ट सो दैट वो लोग ऐश्वर्या के साथ अपने रिलेशनशिप सही रख पाए।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And you know, बड़ी मजाकिया चीज ये हुई कि अमीषा को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन लेटर ऑन इन एन इंटरव्यू अमीषा पटेल ने इस बात को जाहिर किया कि उन्हें काफी टाइम तक ये नहीं पता था कि चलते चलते कभी उन्हें ऑफर की गई थी। हो सकता है वो हाँ कर देती इस फिल्म के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके जो सेक्रेटरी है उन तक ये बात पहुंची थी और उन्होंने इस बात को अमीषा को बताया ही नहीं कि चलते चलते आपके बैग में आ गई है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अमीषा वॉज वेरी बिजी इन दोज डेज। तो या दैट was the reason that she could not do chalte chalte, and then uske baad ye film was also offered to Kajol, lekin Kajol decided to not do the film because of the reason ki she knew ki Aishwarya was doing this film and there is a certain reason jiski wajah se unko ye film chhodni padi hai, aur isse unke aur Aishwarya ke relationship pe kahin na kahin impact aayega, to she stepped back। मगर रानी मुखर्जी कुछ ब्रेव निकली। रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय वो बेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम, एंड शी सेड अ यस टू चलते चलते प्रोबेबली विद द कॉन्फिडेंस कि यार हम इतने अच्छे दोस्त हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज प्रोफेशन एंड लेट्स नॉट टेक इट पर्सनली। लेकिन शायद ऐश्वर्या राय ने इसको पर्सनली ले लिया, सो मच सो दैट कि आज भी कहीं रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय डोंट सी ईच अदर। इनफैक्ट हमने उनको इन पब्लिक भी कहीं भी एक दूसरे के साथ स्टेप इन करते हुए स्टेप आउट करते हुए नहीं देखा है। सो या ये जो बहुत अच्छी दोस्ती थी आशुमा और रानी मुखर्जी, क्योंकि रानी मुखर्जी ऐश्वर्या राय को प्यार से आशुमा ही बोला करती थी, वो टूट गई सैडली सैडली। आप एक बात बताओ, अगर आप रानी मुखर्जी या ऐश्वर्या राय की जगह होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते? डीएम कर सकते हो मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा है एंड यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। बड़ी लंबी चौड़ी पोएम बन गई यार, बहुत मीटर में बिठा लिया मैंने राइमिंग को। स्टे ट्यून्ड।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: मिशन कश्मीर का ये गाना जब आया था तो हमें इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन गाना इतना अच्छा लगता था कि बस बाय हार्ट याद कर ली थी इसकी लिरिक्स हमने। Interestingly, this song is actually a Kashmiri folk song, जो एक भवरे यानी कि बुमरो और फूलों के बीच जो रोमांस चलता है ना, उसके बारे में बात करता है। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और जसपिंदर नरूला की आवाज में दिस गाना sets a vibrant mood। और सिर्फ आवाज ही खूबसूरत नहीं थी, प्रीति भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी इन द ट्रेडिशनल कश्मीरी अटायर, और ऋतिक रोशन इन द पठानी सूट। ओए होए होए होए, बस लड़कों को पठानी सूट में देखना इज वन कमजोरी हम लड़कियों की, नहीं क्या? एनीवेज, इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे। अभी के लिए तो इस गाने को आपकी प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल जो कि है मिर्ची सारा। मैं आपसे मिलूंगी सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchie. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा अपने।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

मोहिनी मोहिनी मोहिनी, पूरा एयरपोर्ट बस इसी आवाज से गूंज उठा था। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। तो देखो, मुझे पता है कि पूरे दिन की थकावट अगर तुम्हें मिटानी है ना, तो बस यहाँ पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है दीज एवरग्रीन रेट्रो सॉन्ग्स, और ऑफ कोर्स इन गानों के पीछे की कहानियां, उस रेट्रो जमाने की फिल्मों के पीछे की कहानियां। तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। आज जब मैं ये कह रही हूँ मोहिनी मोहिनी, तो बताओ कौन सी फिल्म पे एकदम रिसर्च करके आई है श्रेया? फुल होमवर्क, एब्सोल्युटली करेक्टली एप्टली डन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कुछ गानों के उस पर जब मैं मिलूंगी तब बताती हूँ, तब तक सोचते रहो, फिर से रिपीट करती हूँ मोहिनी मोहिनी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मोहिनी मोहिनी एक ऐसी फिल्म जिसके पहले माधुरी दीक्षित ने भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगी आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जैसे ही मैं मोहिनी मोहिनी कहती हूँ तो ऑफकोर्स आपको याद आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल, आज बात करेंगे फिल्म तेजाब की। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित वॉज कास्ट ऑपोजिट अनिल कपूर। इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स थे, चंकी पांडे थे, किरण कुमार थे, सुरेश ओबेरॉय थे, ऑफकोर्स अन्नू कपूर प्लेड अ वाइटल रोल, और माधुरी दीक्षित ने तब तक कुछ खास कदम नहीं जमाए थे और उनको लगा था कि वो इतने सारे स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं खो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन दो द रोल वॉज इन दैट ग्रेट दैट शी गॉट, लेकिन द सॉन्ग दैट शी गॉट वॉज 1 2 3। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कहते हैं कि जिस कंपनी ने कैसेट्स रिलीज किए थे, दी ऑडियो कैसेट्स, उस समय यू नो कैसेट्स ही चला करते थे, तो उस कंपनी को बार बार लॉट में नए कैसेट्स का बैच रिलीज करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, बिकॉज खत्म होते जा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, सो तेजाब का ये वाला गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Energy. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, किस किस को शाहरुख खान का मन्नत अंदर से देखना है? देखना है तो चलो मैं लेके चलती हूँ। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है तेजाब। 1988 की ये जो फिल्म थी, उसके बाद ना जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1990 तक आते आते माधुरी दीक्षित बिकेम द नंबर वन हीरोइन ऑफ इंडिया। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मन्नत की बात कर रहे थे हम। देखना है तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि शायद जब ये फिल्म बनी तो आपको नहीं पता होगा। इस फिल्म में अनुपम खेर का जो बंगलो दिखाया गया है और उसके शॉट लिए गए हैं, वो बंगलो अंदर से भी दिखाया गया है, बाहर से भी दिखाया गया है, वो है शाहरुख खान का मन्नत। आई एम श्योर अब इतने साल हो गए, उसमें बहुत सारा रेनोवेशन हो गया होगा, बट यही वो बंगलो है जो कि शाहरुख खान ने खरीदा था। यस, सो इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, आपको तेजाब फिर से देखनी पड़ेगी। अनुपम खेर वाला घर आपको अब पता है ना कि शाहरुख खान का मन्नत है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

वेटर इतना घबरा गया था कि उसने एम्बुलेंस बुलाई, और मैनेजर इतना घबरा गया था होटल का कि उसने तो सीधे पुलिस बुला ली थी। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टुडे तेजाब। अब हुआ ये कि गाना है ना सो गया ये जहां, इस गाने से पहले राइट बिफोर द सॉन्ग देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस दैट वाज शॉट। अब ये फाइट सीक्वेंस शूट हो गया, लेकिन भाई एक्टर्स ये भूल गए, जैसे कि चंकी पांडे, अनिल कपूर एंड ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने ना मेकअप नहीं उतारा। रात का समय था, ये गाना शूट हो रहा था, गाड़ी में उन्हें इतनी भूख लगी कि पास के एक होटल में चले गए। होटल वाले देख करके घबरा गए कि ये क्या खून से लदे पदे एकदम खून ही खून हर जगह दिख रहा है, ये लोग कौन आए हैं। तो जो वेटर था वो इतना घबराया, उसने एम्बुलेंस बुला ली कि भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो मैनेजर था उसने तो पुलिस को बुला लिया कि हाँ कोई ऐसा वैसा केस तो नहीं है। बाद में उनको बताया गया कि अरे भाई हमने मेकअप रिमूव नहीं किया है, हम सीधे सेट से आ रहे हैं। अब इस गाने की बात हुई है तो ये गाना थोड़ी देर में सुनाती हूँ, मजा आता है मुझे आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। कम राइट बैक, दिस इज श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाटिया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके, यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिम्पल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिंपल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिंपल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया है तो मैं क्यों वापस करूँ। ये कंट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिंपल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिंपल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए और अगले दिन टीनू आनंद ने दो फिल्में अनाउंस भी करी। ये जो दो फिल्में थी उनका नाम था महाकाल और एक का नाम था आलीशान, पर ये दोनों फिल्में कभी बनी नहीं। इसीलिए डिंपल ऑलवेज फेल्ट कि टीनू आनंद ने चीटिंग की, जो कि एक्चुअली में की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: तीन शहर और 17 दिन एक गाने को शूट करने में लग गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म तेजाब। वेल, इस फिल्म का सारा होमवर्क करके लाई हूँ मैं, और जब मैं रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे पता चला कि ये वाला गाना जो आप सुन रहे हो ना, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ बाय नितिन मुकेश, क्या क्या हमिंग है। वेल, ये गाना जो अलका याग्निक के साथ उन्होंने गाया, इस गाने को क्योंकि पूरा रात में शूट किया जा रहा था, हाँ, कि टीम बैठी हुई एज इन दी एक्टर्स बैठे हुए हैं गाड़ी में और वो रातों रात एक गाड़ी में बैठ करके रास्ता कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को क्रॉस किया था और 17 रातें लगी थी टू शूट दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
1: सो गया है रास्ता।
0: आई नो, मुझे पता है कि आपको एक गाना पूरा सुनना, तो ये लो पूरा, कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस बार कमरे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री, वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर। कम राइट बैक।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: कभी हमने नहीं

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा।

हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आए।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: अच्छा, कभी कभी ना फिल्म इतनी एंग्रॉसिंग होती है, इतनी एंगेजिंग होती है कि समटाइम्स ना लोग बहुत ऑब्वियस से सवाल भी नहीं पूछते। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज तेजाब फिल्म की बात हो रही है। तो क्या हुआ, अगर आप तेजाब देखोगे ना तो ब्रेक के पहले तक बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें नाना पाटेकर का सीन है, एज इन नाना पाटेकर ने शॉट किए हैं वो सीन्स, आपको दिखेंगे कुछ एकदम वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। लेकिन ब्रेक के बाद सडनली नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही गायब हो जाता है। लेकिन फिल्म इतनी इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी, बॉलीवुड का सारा तड़का उसमें लगा हुआ था कि लोगों ने ये सवाल किया ही नहीं कि अरे भाई नाना पाटेकर का हुआ क्या। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अनिल कपूर की तेजाब मूवी को लेकर के। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ 50 वीक्स तक 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया था इस फिल्म तेजाब ने। अब हुआ क्या, तेजाब जब बन रही थी अनिल कपूर के पास डेट्स ही नहीं थी, ही वाज बुक्ड फॉर 2 इयर्स। अब ये जो फिल्म की कहानी थी ना, ये कहानी एन चंदर ने बोनी कपूर को सुना दी। बोनी कपूर जो कि अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, अपने भाई के लिए अच्छी फिल्में देख रहे थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये फिल्म तगड़ी होने वाली है। सो उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि भाई ये फिल्म कर लो, लेकिन अनिल कपूर ने कहा मेरे पास डेट्स ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। सो देन बोनी कपूर स्टेप्ड इन एंड ही टोल्ड डायरेक्टर एन चंदर कि एक काम करना, जिस भी दिन अनिल की कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी वो दिन तेजाब का होगा। सो ऐसे करते करते अनिल कपूर के कई सारे शूट जो कैंसिल होते थे, अनिल कपूर चले जाते थे तेजाब के सेट पर। एंड दिस वाज हाउ तेजाब वाज मेड। इमेजिन, इतनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म वो एक्चुअली में अनिल कपूर की, क्या बोलूं मैं, वो कैंसिल डेट्स पे बनी थी। कभी कभी हमें नहीं पता होता ना कि हम किसी चीज़ के लिए जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं वो काम करेगी, या फिर जिसको बहुत कैजुअली ले लिया वो काम करेगी। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अनु कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अनु कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अनु कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज कि ओहो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना। गानों के उस पार फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, जाने का टाइम हो गया है, तो गड्डी में बैठो, लेट्स हिट द हाईवे। अच्छा, आज का मेरा हाईवे हिट उन पे है जिनकी लाइफ में वो ड्रीम गर्ल आ चुकी है। आई वो ड्रीम गर्ल जो किसी शायर की गजल होती है, झील क्या कमल होती है।
1: दिल में मोहब्बत है,
0: अगर ऐसी ड्रीम गर्ल है तुम्हारे पास तो उसे जरा करीब रखो, समझे, थोड़ी बहुत उसकी बात मान लिया करो यार। On that note, this is Shreya signing off. I will see you tomorrow. Khayal rakho apna. Good night.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

0: लाइट्स कैमरा मारधाड़।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब यार एक्शन को मारधाड़ नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। वेल आज पांच के पंच की लिस्ट के थ्रू ना मैं हिंदी सिनेमा की कुछ अमेजिंग एक्शन फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ जो आप इजिली बिंज वॉच कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, एंड इन मूवीज को बहुत अच्छी IMDb रेटिंग्स भी मिली हुई है। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, नंबर दो पे हमने मेजर डिस्कस किया, नंबर थ्री पे दिल्ली बेली, अब नंबर चार पे बात करते हैं फिल्म एक्शन हीरो के बारे में। हाँ जी, ये फिल्म पर्सनली मुझे काफी पसंद आई थी, डायरेक्टेड बाय अनिरुद्ध अय्यर। ये 2022 में रिलीज हुई थी जिसमें आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत, ओहो हो हो हो, क्या किलर परफॉर्मेंसेस दी हैं दोनों ने। एक्शन हीरो एक्सप्लोर करता है द थीम्स ऑफ सेलिब्रिटी, फेम एंड द मीडिया। आयुष्मान खुराना एक पॉपुलर एक्शन फिल्म स्टार बने हैं जिसका नाम मानव है, और वो एक पचड़े में पड़ जाते हैं जहां एक लोकल एस्पायरिंग पॉलिटिशियन का एक्सीडेंट हो जाता है व्हाइल शूटिंग फॉर हिज मूवी इन हरियाणा। फिर आगे क्या क्या नहीं होता भाई साहब, किस लेवल पे जाती है ये फिल्म, वो तो आपको देख के पता करना पड़ेगा यार। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे डिस्कस करते हैं फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता के बारे में, डायरेक्टेड बाय वसंत बाला। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी जिसमें अभिमन्यु दसानी, राधिका मदन और गुलशन देवैया लीड रोल्स में थे, एंड इस फिल्म को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। वेल ये कहानी रिवॉल्व करती है सूर्या के इर्द गिर्द, प्लेड बाय अभिमन्यु दसानी, और उसको एक रेयर मेडिकल कंडीशन है कॉल्ड कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। अब इस कंडीशन में क्या होता है, उसको चोट तो लगती है बट उसको वो दर्द महसूस नहीं होता, बट इट ऑल्सो कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस एंड रिस्क। बाकी गुलशन देवैया एज एन एंटागनिस्ट इज जस्ट किलर, आई टेल यू। सो या ये थी आपके लिए एक्शन मूवीज वाली बिंज वॉच लिस्ट। बाकी मेरी इस लिस्ट में और कोई मूवी ऐड करना चाहो तो कनेक्ट करो यार, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Energy. It's hot. Mirchi, it's hot.

0: He's the natural badass on screen.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: बाबू मोशाय, badass रवि कुमार की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है यार. कहाँ जा रहे हो? मैं तो नाना पाटेकर सर की बात कर रही हूँ, who happens to be one of those actors जिन्होंने time and again ये prove किया है कि भैया उनसे better और कोई नहीं है जब किसी natural badass character को portray करने की बात आती है on screen. इसलिए आज मैंने सोचा पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू इनकी ही कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट मूवीज आपसे शेयर करूं. तो लिस्ट में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म परिंदा, जो 1989 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विनोद चोपड़ा, जो उस वक्त काफी ज्यादा यंग थे. हाँ, वेल, इस फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी थे लीड रोल्स में, बट द पर्सन हु स्टोल द शो वाज नाना पाटेकर हिमसेल्फ, क्योंकि भैया ही वाज प्लेइंग द मेन विलन. और जिस तरीके से ये फिल्म उस टाइम की पायनियर बनी थी व्हेन इट वाज रिलीज्ड एंड ऑफर्ड मेनी न्यू थिंग्स टू द हिंदी फिल्म ऑडियंसेस, दैट इज स्टुपेंडस. इनफैक्ट इस फिल्म को बहुत सारे मेजर एक्युलेट्स भी मिले एंड नाना पाटेकर ने एक टाइमलेस परफॉर्मेंस दिया विच बिकेम इमॉर्टल. खैर, लिस्ट में अभी नाना की और भी कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल. टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट.

0: ये टिपिकल हिंदी फिल्म वाले हीरो नहीं है।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, नाना पाटेकर सर की बात हो रही है, who might not be the typical हिंदी फिल्म हीरो टाइप्स when it comes to looks, लेकिन जब greatest leading हिंदी फिल्म एक्टर्स की बात आती है तो भैया लिस्ट को टॉप करते हैं ये। तभी तो इनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस की आज हो रही है बात थ्रू माई पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म परिंदा। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म क्रांतिवीर, जो 1994 में

0: रिलीज हुई थी। एंड सीरियसली इस फिल्म में नाना पाटेकर का जो परफॉर्मेंस है उसको उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस वाली कैटेगरी में जरूर डाल सकते हैं। इनफैक्ट नाना का कैरेक्टर इसमें सॉर्ट ऑफ एंटी हीरो था क्योंकि वो रिवेंज लेते हैं फ्रॉम द पीपल हु हैड रॉन्ग द पीपल ही लव्ड। ऑल्दो एज एन ऑडियंस मुझे कभी भी उनकी की हुई चीजें गलत नहीं लगी थी इन द फिल्म। एंड ऑफकोर्स यार इस फिल्म का एंड जो मोनोलॉग आता है लास्ट में दैट इज जस्ट क्लासिक। इनफैक्ट एक छोटा सा ट्रिविया बताऊं आपको इस सीक्वेंस के बारे में। सो नाना पाटेकर के लिए इस सीक्वेंस के डायलॉग्स नहीं लिखे गए थे, नाना पाटेकर को बस ये सीक्वेंस समझा दिया गया था और जैसे ही डायरेक्टर साहब ने बोला एक्शन वैसे ही नाना पाटेकर took everybody by the storm with his words. खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 पे फिल्म खामोशी द म्यूजिकल की जो 1996 में रिलीज हुई थी। पहली चीज अबाउट द फिल्म इज दैट संजय लीला भंसाली की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी ये। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में सलमान खान, मनीषा कोयराला और नाना पाटेकर तीनों थे हु टोल्ड द लव स्टोरी ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय जिन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स झेले अपने मिलाप को लेकर, अपने संगम को लेकर। इन शॉर्ट इनफैक्ट नाना गेव वन ऑफ हिज करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन द फिल्म विच अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी अ कमर्शियल डिजास्टर जिसके बाद नाना पाटेकर और भंसाली साहब ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। खैर अगर आपको कुछ बहुत अच्छा देखना है तो प्लीज ये फिल्म जरूर देखना। बाकी की दो फिल्मों की चर्चा लेके आई विल बी बैक विद माई लिस्ट इन अ वाइल राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Mirchi, it's hot.

है पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।